तापे गोंड खरी अरदेव गंधारी गंधारी सिहुति उचारी तना श्री एह पाचो काई माल राग को संक संगराई मारु मस्त्यांग मेवारा प्रबल छंद को संक उबारा को कत ओ पुराण द गाहे अष्ट माल को संक संग लाहे पुण्यायो हिंदोल पंचहार संग अष्ट सुत उठे थान कलोल गायन तार मिलावी तेलंगी देव खड़ियाई बसंती सिंदूर सहाई सरस अहिरी लहे परचा संख ले पंचो अर्चा सुरमानंद बस कर आए चंद्र बिंबल मंगलन सहाय सरस पान ओ आए बिनोदा काव्य सरस बसंत बिनो कमोदा अष्टपुत्र में कही सवारी पुन आई दीपक की पाड़ी कच्छेली पतमंजरी ठोटी कही अलाप कमोती ओ गुजरी संग दीपक के थाप कलंकार कुंतल ओ रामा कमल खुशम चंपक के नामा गोहड़ा ओ कनरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघ भे काभे पांचो संग

सिद्ध भी अलाप ही श्री राग सियो पंचो थापी साल सागर सागरा और गोंद गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंद कुंभ हमीर कष्टमर मेघ राग पे गावे पंचो संग बनंगन लावे सुरत गोंद मिलारी तुनी पुण्य कावे असा गुन गुनी उच्चे सुर सोहो पुनकीनी मेघ राग सियो पंचो चीनी भेरा तर गज तर के तारा चबली तर नत ओल चबल जल तारा पुन कावे शंकर ओ श्याम मेघ राग पुत्रन के नाम खष्ट राग उन गाए संग रागनी ठीस सबे पुत्र रागन के अठहर हे दस बीस खष्ट राग उन गाए संग रागनी ठीस सबे पुत्र रागन के अठहर हे दस बीस वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगार सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोची लकवार चुपे चुप न होवे जे लाहे रहा लिवतार भूख्या भूख न उतरी जे बना पुरिया बार सह स्यान पालक होए एक न छले नाल किव सच्चारा होये किव कुड़े टूटे पाल हुकम रजाई चलना नानक लिख्या नाल हुकमी होव न आकार हुकम न कहिया जाई हुकमी होव न जी हुकम मिले वडियाई हुकमी उत्तम नीच हुकम लिख दुख सुख पाहिए एक ना हुकमी बख्शीश एक हुकमी सदा बहाये हुक्मे अंदर सब खो बाहर हुक्म न खोए नानक हुक्मे जे बुझे तहो में कहे न खोए गावे को थान होवे किसे थान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडियाया चार गावे

रखे जित से दरबार मोह के बोल न बोले है चित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच ना हो

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। रेरा साहेब सतगुर प्रसाद, हर जुग जुग भगत उपाया, भैज रखदा आया राम राजे। हर नाकश दुष्ट हर मरिया, प्रहलाद तारिया, अंकारिया निंदक फिट रे, नाम देव मुकलाया। जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत न लाए चिराया। सोदर रागा सा महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो